0: रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
1: हर जुड़ा आवाज रेडियो मन आवाज रेडियो मन 88.4 नेटवर्क मुंगरोस तासुल पारा दगशान मलमती पर ग्रमना चितस्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मुंगस तासु सरयो रेडियो मन 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन।
2: द आवाज दे द अमन द आवाज दे द पाकिस्तान द आवाज दे द रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: रेडियो अमन 88.4 करते पदे पंदे बड़े खुले खुले प्रोग्राम नवी तैयार आओ जयावरम
4: रेडियो अमन 88.4।

क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

हाँ जी बिल्कुल, मेरे वालों 10-15 चीज़ को मज़ेदार हो सर एंजॉय का है। और बिल्कुल 10-15 बोरो इधर पास भी यार उधर मुझे तब हम नज़े मुंह सराबों से।

0: हाँ जी बिल्कुल मेरे वालों, रज़ेनो प्रोग्राम के प्रोग्राम के शिरकत तो से वो बिल्कुल मैसेज तो से हाँ बिल्कुल आवाम शरीकों मौजूद में जिकमें दिया हम खबरें अतरी शुरू की मेरे वालों हम खबरें कुड़े दे तरबियत हवले इस राधे के मुख्तलिफ है राय चुकमें दिया हम उस तरह मेरे वालों शरीके के लिए और बिल्कुल अगर मेरे वाले जुम्मन सर रजी दिन के प्रोग्राम की कोशिश की चीज़ डायल का मोबाइल रस्ते रहिए ना प्लास के जबरस्त डायल को बिल्कुल ताकि वो 0927-291-292 डायल के तो बिल्कुल ललाता चुकू ने अगर नीक पने कर और रसी ललाता से आवाज़ चुकू ने प्रोग्राम के शरीक करी हाँ बिल्कुल प्रोग्राम की रोज शरीक है ना अदा बना हुई जुम्मन संग बदा गला रहे रजा के ना हाँ बिल्कुल मौजूद ने बहुम कर कुछ पल बचे हो तरबियत पमूंगा संग को ना और डेर मिने वालों को राय से सीख ली आम उसरा शरीक कर ले मुंगता पकार दी मुंगता पकार दी क्या सब पकार दी क्या काला टिन कॉल पकार दी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: वालेकुम सलाम जी मुसरा सुक ते ओदिकुम जुइना
1: जी ज खालिद उर रहमान खबर का द करकना
0: ओ खालिद उर रहमान द करकना प्रोग्राम के यार कलेते हैं खालिद तो फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा करक कीड़िए ने खबर है प्रोग्राम के हर कले तुम स्तड़े माशे आमीन आमीन और प्रोग्राम ने कल ना और वे
1: अच्छा
0: जी बिल्कुल सरा शरीक का जी बिल्कुल मर्ग ना पस असल मुस्तकबिल सही सही बिल्कुल बच्चों तरबियत मुझे अगले लेवल से रखू चे बची कमोर प्लर नवी चे अगो पो राय रास बंदी अगो दुनिया हम खाइस्तावी और आखिरत हम खाइस्तावी सही सही सही सही बच्चे तरबियत पक्की बिल्कुल सही खबर सही सही और बिल्कुल जबरदस्त मैसेज जबरदस्त पैगाम और खालिद रहमान प्रोग्राम के और मुस्तरा शिरकत का वालों ने हम आर कलते हुए और पल मैसेज पल पैगाम दी मीने वालों सरा शरीक करो और प्रोग्राम के वक्त सरा काम पाते दे नूर बो चाहता दुआ सलाम वालेकुम
1: तरबियत जरूरी है
0: सही सही
1: जरूरी दीनी तरबियत
0: सही सही सही डेर मनना वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम डेर मनना देकाल कवलो यो जहान मनना और जी बिल्कुल दाऊ मुसरा खालिद रहमान दी केड़िए ना जी मुसरा प्रोग्राम के शिरकत करा और यो जहान मनना और जी मोर पुर तो प्रचार दी करना जी बच्चे सही तरबियत की सही तरीके से रहो की ना आगता दी दीन हम और दी दुनिया हम और बिल्कुल प्रचार दी मुश्किल होता जी मुश्किल बच्चे तरबियत सही तरीके से रोकू अगोता मुर्र दास ने उगू करना चाहिए तो ये चीज मरा है था तो बच्चा जमरी न डरी जी क्या ना अक्सर भी देख ना चाहिए मत हो दस के ना दाल देर मस है ना नो आम पकार दी के ना वो बच्ची तो दस वेरा ना आगा वेरा चे अगे वेरे के बच्ची मुस्तकबिल चुकुम दा आगा रोहाना भी मुस्तकबिल कामयाब

जीरो 334 7740 में सुजुना उधर रागल कलर अजमाता मुकारा की दमरा खाली कालो नाटन के मास सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू हो। आलो शाबाब काल दे कर शो तत खबर निश कहो क्या अल्लाह पमान सही दत्ते में रुखसात कर ले खफा नशी खबर दे नशल का वाला सो की भी अट्राई होगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: बिल्कुल ऐसे हम नेशनल वजन फ्रंट मेलो डेडिकेट द विनाद बाहर था कसम बोदाई अच्छा कसम बोदाई जमा जाना ना हर चाना जात मिना था असर कोमा ओए डेर सु तमन शुक्रिया नाद बाहर था बिल्कुल डाले दा भी
1: शक्सलिया तम बे सफर जकास तो चीना
0: बिल्कुल बिल्कुल हम नेशनल वजन तरन नाद बाहर था डाले सु यो नाडे मनना यो जहान मनना की और राम से मैसेज

बिल्कुल सुचिना ओके सही तो बच्चा है हेलो सलाम एंड वेलकम टू द शो और जो शो इज वेरी वेरी नाइस बच्चे वहाँ सो स्वीट माय फेवरेट मौज मस्ती शो इट्स मी किंग बम बम सलाल रामंगल मेरे जूता मला शुक्रिया बम बम और सलाल पर गांव से मैच कर लेते हैं तो मना वो जो सुपर मेल ब्रुना जी मसीरा सलाम में वेर कटोल लिसन वालेकुम सलाम मेरे जूता मना वो जो टोल लिसन तो डाली भी और वो दुनिया के दार से तबीब नरता दुनिया की दास तबीब नरता चरंग त गोरे हाल दस राम मलमा बिना दासो चरता मले मिजी हेलो ढेर जूता मना शुक्रिया यो नाडे वरना मैसेज कर ढेर जूता बेहदा मना जी बिल्कुल सरोवरवे मन फतवा ओर से दो डेर फांदावरा डेर फाशे टाफी देर सरोवरवे

है मैं फिर से खालू छेड़ देता हेलो बरजीत मित्र खान सलामी मिठी भाई क्या हाल है शो जबरदस्त है मैंने ना पूरे डेर जूता मैंने यो जहान मैंने वैसे जी वजीर भी क्या ना वैसे मुंबे से जी ना चपोते ना की फुलो शामिल है सही जी वजीर अलग के साबर का और बल्ला ये खबर है कि तो वैसे लगा दास में दर्ता वेल्चे अच्छा यू द रेज फॉर टाइम और यू द लव फॉर टाइम दे अच्छा कह साइडो डर जी तो मना जी मजिरा डर डर भी रोने साइडो मना शुक्रिया और ये चे मॉल में सजीना आशा मिली ना दमर गिले दिख रही थी क्या ना गिले होने के साइडो और जी मजिर भी क्या ना जी मजिर भी क्या ना चे मिडी भाई वो चे यू मजिर शोरी में तक आचे बला रहते मंगल में तरो शी साइडो मंगल में तरो शा साइडो डर जी तो मना शुक्रिया ओ सो मंगल में तरो शो आयु क्या ना सरंगे दो

अच्छा बिल्कुल दर सर और देखना और सर बिल्कुल प्रोग्राम से किम देखना प्रोग्राम से मैसेज ना नूर जो तुरगली जी बच्चे सलाम अलैकुम शाजिया अरमानी शाजिया अरमानी शाजिया अरमानी अच्छा शाजिया अरमानी अच्छा और सर दिल की मरोतना ऐसे सीमा बैठा है सलाम वालेकुम सलाम डेर चु समाना सीमा बैठा है बिल्कुल नेक बनेगा बोल सुनमीना चीज ना हाँ बेरोगा से

जी बिल्कुल प्रोग्राम शायद बिल्कुल मिसीना विच रकीब फाटक दे जेल चौकना वेलकम टू द मौज मस्ती शो मिदी भाई सलाम टू ऑल टीम वालेकुम सलाम देर जी तमाम शुक्रिया और ये कहना सब ये कहना सब ये सब विच उमामा सुमामा आमरा एंड अरमा तर डाली भी आल ताशना पोगाम के पढ़ते दिल ता जमा बदन के भी ने वचे दिना और फातमा जिरसाना देर जी तमाम नन्ना शुक्रिया और रकीब फाटक वेचे दे जेल चौकना ये